0: जन्म सिद्धांत कार्ड ये सदा स्मृति में रख, तो जो भी कुछ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये आशय है दृष्टि लेना पवन से, समर्पित वालों की यही आशय है।
2: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी है। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समान, ऐसी दृष्टि लेना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय की गति को देख रहे और बाप दादा तो बहुत समय से अचानक

0: एक स्वमान देते हैं। हर बच्चा दृढ़ संकल्प धारी विशेष आत्मा बनो। संकल्प किया इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो आप ये दृढ़ता रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई व्यर्थ वा विकारी सोपन लगाव का सोपन आता है तो अवश्य करो।

0: साथ सो जाओ अकेले नहीं, अकेले सोते हो ना तभी सो बनाते। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते,
1: अनुभव करते हैं। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी उठ

Yes.

ऐसे

amigo. Cuscuz.

し。

घुसेंगे और खुशी बांटेंगे। बगैर यहां भी कोई बात हो गई तो खुशी गायब हो जाएगी। खुशी को जाने नहीं देना, है ताकत है, हाथ उठाओ। अच्छा, देखना आपके सोन वाले

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर ही चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सब जानते हैं।

चेक कर पाएंगे।

0: किसका नहीं मानता तो करावर आहार आत्माओं, ये कर्म इंद्रिया करनार करावनार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप शुरू में ये अभ्यास किया जो रोज समापति के समय इन कर्म इंद्रियों दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वो डायरी देखी होंगी तो रोज दरबार लगाते थे और करावनार मालिक बन समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी किया तो आपको भी करावनार मालिक समझ, क्योंकि आत्मा राज है। ये कर्म इंद्रिया साथी है तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष संस्कार स्वभाव को संस्कार को इनों का क्या हाल रहा और फौरन चेक करने से कर्म इंद्रियों को अटेंशन लेते हैं कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा तो आत्मा राजा बन करनार कर्म इंद्रियों से करावनार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया बच्चे कहते हैं कि हम कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हैं लेकिन फिर हो जाते हैं पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण सी अपने स्वमान के सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सेट पर बैठने वाले के ऑर्डर कितना भी करो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों को देख

dronken. Sorry. Call up me. Bye.

Me dejo.

Запусти. А то ми дико. Nick.

0: समझते हैं। कितना बड़ा भाग्य है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी वर्तमान समय के सबसे

संस्कार तीनों के ऊपर

me vale su meme. Posso eu ter

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का शक्तियों की सर्व गुणों की
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Jesus.

Ah, just...

Red Sun.

我叫个叫电视没停电呢，都数着电，阿比阿比，伊斯巴杰卡，佛陀尼卡尔基贝吉。जाएगा कि मैं

Meteor.

सरकमस्टेंस के परवार बहुत टेंशन में रहते हैं। आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उनों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश कर

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे। बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय पर मान कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स करो। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वो आत्माएं बाप के सिर्फ सनेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स पढ़ने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने। ये हो सकता है अभी फोर्स का

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ See.

0: es a ti.
1: Yo.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा अभी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो, बहाने बाजी आलस अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत संकल्प स्वरूप में समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह सेकन के दृष्टि से भी मास्टर दाता हो, जो भी आवे कुछ ले जावे, चाहे सने ले जाए चाहे सहयोग ले जाए चाहे हिम्मत ले जाए चाहे उमंग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे वैसे तो सभी का काम ये है। कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है खाली हाथ नहीं जाए, चलो दृष्टि का सने ले जाए, लेकिन जो आया वो गया कैसे।

भी आपका वायुमंडल विश्व में सने संयोग

0: सभी की भ्रमण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Get the sun.

Yeah.

डिस्कोटेक करके कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये भी व्यर्थ संकल्प का विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान। और आजकल ये

अब

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वैसे अभी सिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि सिवा से लगन अच्छी है। सिवा के लिए एवरेटी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए वरिटी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मा की स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैल साथ संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मा की स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो ऐसे भाषण के रिजल्ट में कहती है बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई। ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप के अनुभूति का भी वर्णन करे। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने जब साइंस के साधन अगर ठंडा वातावरण कर सकती है, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है। सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? ये रिसर्च करो, सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए तब समापति के समय को समापन कर अपना राजनाम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी तो सिर्फ पैर का शिकल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देख तो खुश हो जाती है, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई, सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्ति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी किसमें होशियार बनेंगे? वन सासियों नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं। सब कर सकते, बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगा देगा खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगा। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मन आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं आत्मा, richest in the world है। ब्रह्मन है तो richest in the world।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सोने समय अपने पति को बाप दादा को पोता मिल क्लियर

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

6, cara.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी सेवा, वाचा सेवा।

por puro 10.

market, night market. Night.

0: और शिवा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिर्फ मारा नहीं,

Ощета. Их съем келье. От тузра. Чвала мухи йога двора. Opening.

0: परिवर्तन किया। समय अनुसार
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने है और बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर

Se até

estorbe. Vado a vantar tu poncio de una. Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले निमित्त बने हुए फरक

ใจดับบัตรฟ้ารู้ลิก

0: Все-таки папа, типа.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, सम्मान संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप की कौन थे, कौन है वो बच्चों सूरत और मूरत से दिखाई दे, अनुभव करे कि इनके नैन, इनके बोल, इनके
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सफल कराओ अगर कोई असर
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चों को

てってやれ。かっこいいプレステって言え。かっこいいプレステって言え。エッセイ。チャロンオルケー。

0: cosa, Teo. Is he practice? So you have me.
1: मंदबुद्धि को

ब्रह्मन मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्तिवान

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: लोग हर एक का भाव क्या है वो नोट करते हैं, क्या निमित भाव से कर रही है वह अवमान के भाव से
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठ Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा पूछते हैं, वो तो देख लिया प्रकृति का खेल, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सर्प

dulceo tiene vale. Ya es government. Ya es. Aspas.

falare deste jegia forne announcement karne lag jate to bab dada puchte aap brahmanon ne apna karya kiya aapko bhi अलर्ट होना चाहिए। इस तौर सहयोग देना ये भी आवश्यक होता है। इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्रह्म

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देंगे

वाह वाह शब्द भूलना नहीं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चारों के बच्चों

0: se nei koike ki se leme te met kapata पश्चाताप करके उसको खत्म करो, जमा नहीं करो। बाप दादा रे का खाता देखे तो कैसे खाता हो, ओके वेरी गुड।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने कई बार इशारा दिया कि समय अच्छा सिक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक।
4: इस अभ्यास को
3: चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम योग की हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू, एक घड़ी अविनाशी हो जाती क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाएगा, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज के दिन

चेक कर रहा हूँ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बीमारी फिर से आ जाती है। ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

chaussée.

पहुंच गए।

Nurse.

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस समय आप हरि का आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने सने संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो, चिल्ला रहे भाषा में चिल्ला रही है, शांति दो, सने दो, दिल का प्यार दो, सभी पाप के कौन हो, राइट हैंड हो ना, राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति का अंजलि तो दिलाएगा। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे, कितने तरफे आप भी सभी हद तक की बातों से ऊंचे हो जाओ, हद तक की बातों में हद तक के संस्कारों में समय नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले पाप ने कहा और बच्चे ने किया, हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वालों आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, प्रजा तो बनती जाएगी साधारण प्रजा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है, तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा उसे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे।

0: सो नहीं मुस्कुराओ, जोर से हंसना नहीं मुस्कुराना, क्योंकि बाप दादा को अभी दीवार पर शरद चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो सोचा

किसी भी परिस्थिति में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Baby.

del Quito a Elena. Rosa Brandt.

0: sens doué. L'été. Urte txelo. Or orate.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कहीं कहते हैं ज्ञान योग क्या, बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा है, ज्ञान अच्छा है। कहेंगे ज्ञान यूज करते हो सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों भाव से प्यार, तो कभी
2: पदम
1: सबका भी यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दें, मुक्त करें। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते, तो इन्हों को मुक्त करो। क्योंकि पापा है ना, तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे है, और 24 बार करना। नींद, नींद के टाइम नींद भले करो। बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में भराओ।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे ही अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा के मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करनार बन बाप समान न्यारे और प्यारे। बाप समान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाते तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं। Joe.

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स उठो, दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स, चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते

खाली सुनाने के सीट मिली। पापा बेस्ट टीचर्स को

Say it.

0: parte quieta. Cardiana.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, खास आपको चांस मिला है। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ, श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाए अपनी राशि खजाने का मैं तो सुनाऊ। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपन ने हम जिंस कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, है चिंता? हाँ नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो आपको से बेफिक्र हो, बेफिक्र होके टूटने वाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होगे डरने ठीक नहीं होगा, तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते ये तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, डरने अच्छा होगा और बच जाए, टचिंग होगी, अभी समय अनुसार ये करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र मारना, बिजनेस भी करना और अपनी स्थिति भी करना। तो सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बात जाए, फिक्र की बात भी बदल जाए। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रही, बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं हिम्मत ही के मददगार नहीं। आप सोचेंगे बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है, हिम्मत बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वर्तमान समय और स्वयं

Scheiße.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Him.

かす

अभी इसकी आवश्यकता।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हर एक वर्गीकरण से ऐसी

0: टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैला फेस्ट
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के लिए छोड़ना है और क्या बनना।

por rica.

बच्चे के लिए क्या चाहता है।

Peace.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छे, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी निर्णय देने पड़ेंगे। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है न, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा। स्पष्ट हुआ स्पष्ट, क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विशेष

0: verse. İşara dira. Apana sangam yukka. Last swarup. बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाती, दिल खुश, चेहरा खुश,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना, कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मक रूप में देखना, वृष्टा रूप में देखना, वृत्ति दृष्टि। और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में, तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, ये प्योरिटी की निशानी। वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में ये धारणा हो, कोई क्या भी करता है दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने सुख दिया, सुख दिया ना, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मात्माओं को क्या करना?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल चाय संसार में, चाय भ्रमण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार, मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत, मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश हो गए, नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत तो परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती, पाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये हो का, आपको समृद्धि दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ समृद्धि से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया। हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समृद्धि सुतई दिलाएंगे, समझा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संबंध संपर्क में

Salva.

सारा ब्रह्मांड परिवार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक स्टॉप बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, दूसरा स्टॉक जमा कर, दोनों जरूरी है। तीन खजाने विशेष जमा करो, एक अपने पुरुषार्थ
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ये होमवर्क देते चेता, कि ये तो मास एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत का अपने प्रत विधि बनावे। इन दो मास में हरेक अपना चार्ट रखे, व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी का हुआ भी है। मन जीत जगत जीत, तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट आप देखना।

मन खुश। तो मन की खुशी बांटेंगे, ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त संकल्प समय दोनों समाप्त।

0: सत्यम शिवम सुंदरम
1: आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी। अगर एक एक स्वमान रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड अल्मेटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी, उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके, और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली। तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राजभाग मिलेगा, लेकिन ये स्वमानों की माला संगम युग की देन। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, स्वमान के अथॉरिटी में रहो। मैं कौन, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान उदी में रखा, उस स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया, क्योंकि खजाना भरने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देवान खत्म हो जाता। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, माया आ गई, माया आ नहीं जाती, लेकिन माया ने बाप को सुना है कि मेरे को आह्वान करते हैं तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करते हैं, माना माया को आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ता है तो माया को आह्वान किया। जाती तो माया बलवान हुई आप, तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है, एक एक दिन दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sarva.

परसेंटेज

100% rested.

negarme entre observarla. Hello.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विशे।

इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। Yeah.

ya bien. Que tu conecte. Sadak.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा का ये संकल्प है कि इस शिवरात्रि पर या एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह पीछे दिनों में अपने परिचित अपने मोहल्ले वाले अपने दफ्तर के कार्य करने वाले साथी इन्हों को संदेश जरूर दो कि अगर बाप से वर्षा लेना है तो ले लो, ये संदेश जरूर दे दो। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहे जो कहे कि हमको अभी लास्ट में क्यों संदेश दिया, थोड़ा पहले तो देते तो हम भी कुछ बना तो लेते, नहीं तो लास्ट में तो सिर्फ आओ प्रभु कहते रहेंगे। आप आए, हमने नहीं पहचाना, वो लेना देते रहे। तो इस शिवरात्रि पर किसी भी विधि से ऐसा प्रोग्राम आपस में बनाओ जो पहचान वालों को संदेश मिल जाए, फिर राव उन्हों की तकदीर। लेकिन आपने अपना कार्य पूरा किया तो हर एक को ऐसे किसी भी रूप में उन्हों को संदेश पहुंच जाए। फिर जैसी नेचर, जैसा स्वभाव, उसी परमार अपने अपने तरीके से संदेश जरूर दो। बड़ा दिन है, खुशखबरी आपको सुनाते। तो ये ओलेना निकल जाए, अभी भी प्रोग्राम करते हो तो क्या कहते हैं, ऐसे भी कहती है अभी भी कि हमको तो अभी पता पड़ा आपने पहले क्यों नहीं किया। इसलिए बच्चों का, बाप दादा का जन्मदिन है, जो पुराने अपना जन्मदिन कौन सा मनाते, शिवरात्रि मनाते हैं ना। तो इतनों के जन्मदिन पर ये संदेश देने की मिठाई बांटो, ठीक है? बांटेंगे, हाथ उठाओ, कोई भी वंचित नहीं रहे किसी भी विधि से। फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा भेजो, लेकिन कोई रहे नहीं, किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचाऊं। वो आप आपस में रहकर तीन चार तरीके बनाओ, फर्क वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दे। पसंद है आज?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Show of power.

baby. बात दुआ नहीं निकलेगी उसके प्रत सदा सहयोग देने की दुआ निकले सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें जाने वाले होते हैं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Ciao.

0: शुभकामनाओं की वृद्धि से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी, कहते हैं हंसाते हैं बाप दादा को, अच्छा है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खाली हो जाती है, लेकिन मन का

Shalom. Síganme. Shalom, Jai. Yo soy yo. Hold on.

Result negativo. Ese no es un yo que es.

संकल्प समय।

encanta.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना। कुछ भी हो जाए अपने स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो, पटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान के सीट।

0: पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के बावजूद देखो, कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब ये दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं। ये दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए। जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारिया मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। ये धीरे धीरे अभी कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है, धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए। एक दो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होके कहे कि ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते ही कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते सुनने आते हैं, समझने लगे, लेकिन अभी इसका आवाज होना चाहिए। ये तो विशेष बातें हैं। इसे ये सिद्ध हो सकते हैं कि इनको ये सिखाने वाला कौन, तो ऐसा पुरुषार्थ करो स्थित हो जाए कि कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाले।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Nostagmi. Chamaktiwi. Chotikireka. Chamakri. Body.

what, Vox?

me.

श्रेष्ठ कर्म के कलम से कीजिए। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य Sheep.

0: इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्वरेखाएं प्राप्त होती है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी अपने अंदर चेक करो, मेरे वृत्ति में किसी आत्मा के पृथ्वी कोई नहीं रहो। सकते हैं। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपके जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबर वार तो है ही ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो पाप जज है ना, आप सब जज बन गए हो एक दो के, बाप भी तो देख रहा है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष और बाकी मीठे का

0: enlightened and knowledgeable. Banana rang nahi hai, lekin vritti mein dharan karna ye rang hai, kyunki apne mein motav virat sankalp yaad ki power kam नुकसान होता जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्मा है। अगर वृद्धि वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है, वृद्धि से वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता, लेकिन मूल है वृद्धि। समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपने वृत्ति को अपने लिए दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो, नॉलेज फुल भले बनो, लेकिन अपने मन में धारण नहीं करो, नेगेटिव का अर्थ है किचरा। वृद्धि पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया वाणी से परिवर्तन, सिक्का से परिवर्तन, बहुत धीमे गति से होता है लेकिन बहुत धीमे गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो नॉलेजफुल बन के स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाने जमा होता जाए। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है, हर खजाने का चार्ट देखा तो क्या देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है।
2: समय पर
1: संपर्क करेंगे। समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सब याद उठाते, अगर बहुत समय का जमा खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको जमा करो, हो जाएगा आ जाएंगे के नहीं करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अच्छा,

Thank you.

0: neva, loco. Fixeis farta neve. Que acartelse. Tchau. Tor last so fast. Faço aqui as patada ar parivarca absaba.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आता है चित्र खींचने आता है।

Love.

सबसे

संकल्प किनारे कर देखो, आप सभी

Tränen.

रचना इस फिरके के चर में बैठी।

बेफिक्र बादशाह सारा फिक्र

See.

0: तुम्हारी आत्मा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

0: பரம்தாம்.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी बाप दादा ने चोटरल बताई थी, याद है? पांच पांच मिनट सारे दिन में एक बार ड्रिल करनी है, वो की है जिसने वो ड्रिल की है, वो हाथ उठाओ। की है, की है, दोनों ने हाथ उठाए। क्यों?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अपनेपन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो उसका

0: अपमान की दृष्टि से देखो, हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहता है, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक पापा का बच्चा है। पापा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले आए, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत आते, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष में नहीं हो। मेरा पापा जो होली का दिन है ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना तो बाप दादा ने भी कहती है तरस पड़ते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा, जो चाहते हैं उनको दे रहा है, आपको दे रहा है ना, मदद दे रहा है ना, जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी।
4: बहुत लोगों का निमंत्रण होता है पीछे तो
3: नहीं, उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं कर चल सकता है शरीर, कभी तो एकदम खराब होता है ना वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती, ये भी दवाई है। कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साथ साथ

있네. 거의 반성하대. 앞서

टेस्ट भी आते हैं, समाचार तो अच्छा है, संसार समाचार जैसे अच्छे लगते हैं, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है।

समाधि। कटने की आलिंगन अंदर तो सुन ली माना समाधि, तो बात सच्ची भी है। समाचार सच्चा

जिस्म समझ आ रहे आप कर कुछ नहीं सुनते। अच्छा सुना कर कुछ नहीं सुनते तो समाचार कहां जाएगा? बुद्धि में तो गया ना, श्रीमत में पारमिक क्यों की जो बाप की आज्ञा सुनते हुए नहीं सुनो तो आपने सुना क्यों? और उसकी आदत डाली मानो एक बार ही आपको समाचार सुने आपको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं बात ऐसा भी होता है ये पता तो पड़ गया लेकिन एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहां जाएगा? आपके पास आएगा, आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आके सुने। क्यों कि आपने सुना वाह तो उसको समझा तो ऐसी बातों से

Salud.

0: துயிர் பரமத்த வயுமண்டல் குறுக்கரம்
1: कोई कितना भी कहने मैं तो कभी
0: में किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर सिर्फ चिप रहना पड़ता है। अब तीसरी बात है पारदर्शक, दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार, बहुत होशियार, तो पारदर्शन संकल्प

你怎么明白的？समझ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो का दूर भी बैठे हो सकेंगे, टच होगा, ये करना है, ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान सा

叫，杰西叫，菲西，曼尔波蒂哥，控制可以。Jesse Story.

Carpentria. ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अचानक

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Buddy।

Eskilliste. Abosme. निकालना, बाप दादा आज नहीं सुनाते। हिंट तो दिया ना, तो निकालना। सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनेंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ some

Samantha, caro. Y entonces,

0: अपन संपर्क में।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेज को स्वयं भी मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें, अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों? बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर, तीसरे जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, हम सहज योगी नहीं है। कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है क्या? याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अग्न है, अग्न कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती। लोहा भी बोल्ट बन जाता है, ये लखन की अगन क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकते? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस पगले है, क्या करे, पुरानी हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते, बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा टीका उठाया, कोई टीका उठाया है, टीका तो उठाया है, विश्व परिवर्तन करेंगे, तो जो विश्व परिवर्तन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बाप दादा के वरदानों को अपर बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ के अमृत वेले और साथ में कर्म योगी बनने के समय

0: इस करके स्वरूप में लाओ, अनुभव करो उस वरदान का, रूहानी नशे का अनुभव करो, तो वो वरदान आपका अमर वरदान हो जाए। क्योंकि वरदान के विशेष आत्मा है, भक्तों को भी वरदान मिलता है, लेकिन वो अल्प काल का, एक जन्म के लिए। आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है, इसलिए वरदान स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बुद्धि में नहीं, श्रम स्वरूप में लाओ। उस नशे में रहो,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं है। सुनाया एक एक संकल्प का इक्कीस जन्म का कनेक्शन, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मनन में चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो, अपना चार्ट बनाओ, बीच बीच में जो बाप दादा ने ट्रिल सुनाई है बिन बिन, जानते हो ना ट्रिल अशरीरी बनने की, अपने तीन स्वरूप व्यक्ति की जानते हो ना, जैसे बाप के तीन रूप हैं ऐसे आपके भी तीन रूप हैं, ब्रह्मन फरिश्ता और देवता। तीन रूपों में ट्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो, इसलिए महामंत्र क्या है, मन मना भव।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: 5G.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: I'm

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज सम्राट बाप अपने समृद्धि स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष snake।

0: baby, prostě ty. Sečan bokar, ty. Pap, tata, bíke, ty. Kisata. Sanej, kisakar, mi. Samayro. Sane Chatrachaya Chatrachaya Ki Andar Koi Maya Ki Parchai Bhi Nahi Par Sakti. सेज माया जीत बन जाते जो निरंतर सने में रहते उसको किसी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती सने सेज पाप समान बना देता सने के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात सने के दिन में सने में समय रहे ऐसे सदा समय रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: See

마스크를. 사일렌스. 가상갈랍기야. 어서로 보아. 이스켈리의 섬에 기아부식 Second copy.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है, किसको सी

cholo.

Santo.

So.

ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी।

0: tomado que preto. Shopauna. Shopkamna. Kivrti. Ortristi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: में बाप दादा हर एक हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ, हाथ उठाने में तो ठीक, तो क्या करना, अच्छे एक दो को अटेंशन दिलाते रहना, क्या करना, रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने पोते करके गुड नाइट करना, बाप से भी और बाप की याद में आप भी सो जाना, आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, तो आपको बाप के रूप में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन अभी जैसे शरों द्वारा वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही

See.

0: Die Seagull. Cuxica. Fortan. Teu. Cheia pesca. Que o que sabe é cambelega.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों हिम्मत दे रही है कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समृद्ध बन समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनो, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुश नमा खुश किस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अब इस समापति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो

0: को समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, पाए का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ, मन का हाथ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: कभी भी कुछ भी होवे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फौरन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो जो दूसरों अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आप किसी वन की मर्स जमा हो गए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बात

0: sei che a quel te. Guarda. Tu corvar che ten. Guarda che ten fecece. E se rupse. Corvar come nao. Koi da koi fishes for dan amrat vele se apne poti me emerge rakho for dan to nahi ke lekin fishes एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदान ही दिन में वरदान स्वरूप बन वरदान को रिपीट नहीं करना है लेकिन वरदान स्वरूप बन और चेक करते रहो तो आज समय वरदान स्वरूप रहे संडे का दिन विशेष दुनिया में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना, तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सेट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा, तो मानते हैं ना? ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते। तो आवाज

0: अपने सीट पर सेट रहेंगे तो शक्ति आपके आगे सदा जिया सरो। आपकी शक्ति है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश्रय हुई है, पता है कौन सी आश्रय है? वो जान तो गए हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं। लेकिन एक आश ये के पुरुषार्थ में अभी दीवार गति चाहिए, पुरुषार्थ है लेकिन अभी दीवार गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप रहेंगे। लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है, तो बाप द्वारा और सर

विश्व के निवारण करने वाली हो तो क्या स्वयं के छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, तो मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना, लेकिन क्यों रुकावट का दरवाजा बंद है? क्यों तैयार है? लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? शरद में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वो है क्यों? क्वेश्चन शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाते? तो बाप दादा अभी देश विदेश सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों इसको समाप्त कर हर एक समझे मुझे करना है। टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। मैं मधुबन वाले है ना, करना है ना।
से दृढ़ संकल्प करेंगे के कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना कुछ भी हो सहन करना पड़े, सामना करना पड़े माया को। एक

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Hitler now.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बोल पे निर्माण बनो, बोल पे निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलती है, समझती है,
2: सर्व द्वारा सहयोग